0: यार अगर मैं होता हूँ
1: ओ
0: मैं उसी की जिंदगी घुमा रही गांडी है ना,
1: सॉरी.
0: किसको आना कौन वे पब्लिक मॉल्स नो वाचे रोनाल्डो
1: रोनाल्डिनो. ओके
0: अमोर्क एंड बिग मॉल चिकन
1: ओ मोर्क मिस्टर बिग मॉश.
0: अमोर्क एंड बिग मॉल चिकन प्रिंस का कौन है कि क्या जो यार का मॉल वे प्रिंस का नाम की मिरियम बैंक एंड प्रिंस एंड किलो प्रिंस किलो एंड लिस्टी या yin ngeyo ni abidonyo kiri dro takidung nam nutu ne tap ya ibidonyo ti ikino loy man gimati eno man speak fm wa chakati ki muziki mai kwanya ti ka kanye
2: yin tuane kade tuwe ka kenyo speak fama yera por we abun wen tonda bitch video